ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ।

बच्चे प्यारे होंदे हन, अकाल पुरख वाहिगुरु नूं अपने भगत प्यारे हन। भाई हुण मोटे मोटे जंजीरां दे विच कबीर नूं जकड़ के ना आ वेखदे हां हुण इहनूं।

संसार ते आके प्यार ही वंडिया है, पर संसार ने सदा ही रब दे प्यारियां नू दुख ही वंडिया है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हंकारी पंडिया ने जदों देश परदेशा विच जाके हुक्मनामे भेज दिते भाई बड़ा यज्ञ कर रहा है कबीर, ता अकाल पुरख वाहिगुरु आप आके फिर सारियां नू भोजन छकाया, अपने भगत की रख्या की, अज भी रख्या कर रहे। कबीर जी कहंदे ने जदों सानू जंजीरां विच जकड़ के गंगा दी लहर विच दबो दिता गया, फिर सानू डर नहीं लग्या, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु अंग संग है, फिर डर कादा भाई। ना ओए मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे, जिन्हां दे हिरदे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम है, ओ डरदे नहीं भाई, अंग संग हन। निर्भो दाता हर जीव मेरे नाल, निर्भो दाता अकाल पुरख जिन्हां दे हिरदे विच वस गया है, उन्हां नूं भाई किस दा डर है। जिवें कबीर जी कहंदे हन, मन ना डिगे तन काहे को डराए,

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन, त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल कर।

सुख प्रजा दी सेवा करके भुखे नू भोजन देना, लोड़ अनुसार कपड़ा लीड़ा गरीबां नू देना, उना दिया लोड़ा पूरियां करनिया। जे ए सारा तन तू नाल ले जाना चाहुंदा है ना, ता संसार विच जितने भी गरीब गुरबा है सब

जीवन आनंदमय हो गया, जिस जीवन कोई डर सी ना भाई कोई धन कुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। धन गुरु नानक पातशाह जी नू आके कहन लगा, महाराज हुण कोई होर सेवा बख्शो। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमा।

रात दिन कर पिया मजूरियां जितनियां मर्जी हन तू जिम्मेवारी दियां पंडा अपने सिर ते रख लै अंत वेले तेरी किसे ने

ते मैनू नवाजे, मैनू मान बख्शे। मैं तेरे दर ते आके तेरे अगे पुकार करदा हां, कि कृपा कर मैनू।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट

धर्मात्मा हो। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे दसो भाई ऐसा कोई है, बताओ अगर कोई धर्मात्मा हो, जो इंसान के जामे में परमात्मा हो, ना जिसको गुनाहों का धब्बा लगा हो, खुशी से जो अपने वतन पे

0: गला खुद कटाने को बस आप ही है।
1: दसम पिता दी ए गल सुन के गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने अपनी कुर्बानी दिती ते फिर क्या गए ए सारे हिंदुस्तान वास्ते साहबा ने अपनी कुर्बानी दिती। तिलक जंजू राखा प्रवतांका कीनो बड़ो कलू मेसाका ते फिर बड़ा सुंदर करके लिखिया गया है।

तोर मस्तक हर प्रभु लिखिया गुरु नानक मिलिया। भई गुरु सिखां दे चरणां दी जपन वालियां दे चरणां दी तूड़ी, गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करें उद्दम तूड़।

राज राज भोजन खाओ मेरे भाई। राज राज

सब सुख है, पूर्ण सुख है। प्रभु सिमरन विच अधूरा सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, अल्प सुख नहीं है, परम सुख है, पूर्ण सुख है। ते गुरु नानक दा दर संसार दे लोकां नूं दुखी देखना नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। गुरु नानक दे दर ते आपां पढ़दे हां, गुरु नानक देखदे ने संसार सुखी नहीं, ते दर्दमंद गुरु नानक लोकां नूं सुख वंडण तुर पैंदे ने। बाबा देखे ध्यान तर जल्दी सब पृथ्वी दे सहाई, उठ के तुर पैंदे। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह अपने माल की दरगाह चरजोई करते, जगत जलंधा रख लै अपनी कृपा दा, जित द्वार है उपरे तित है ले बार, जिमें बचदा ही बचा। इन्हां तपदियां सर्दियां जिमें शांति दे सकना मेरे साहब उवें ही दे। जिस राह तो जिस दर तो कोई तेरे नाल जुड़दा जोड़ लै साहब। टुटे हुए मनुख नूं, बिखरे हुए मनुख नूं, बेचैन मनुख नूं निरंकार नाल जोड़ के सुखी कर देना चाहते, इन्ना भर देना चाहते ने सुख नाल के मनुख आप भी सुखी होवे ते आले दुआले नूं भी सुख बने। इत्थे भी कहिंदे ना, आप भी सुख पा, होरना नूं भी जपा ते उन्हां नूं भी सुखी कर। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, जप के सिमर के मुड़ मुड़ के सिमर के सुख लै लै, आनंद लै लै। सर्व कल्याण सुख निध नाम, नाम वो खजाना है जिस सारे सुख ने, ते जिन्होंने इस सुख नू प्राप्त करने का यत्न किया है उन्होंने जो कितने किनका मात्र भी इसका सची मुची प्राप्त हो गया, थोड़ा जिहा भी उन्होंने रस आ गया है। साहब कहते हैं मैं उनकी वडियाई नहीं दस सकता, संकल्प भी बख्शे है, आप संकल्प करिया करिए, मन में एक इच्छा करिया करिए, आशा करिया करिए। सिमरों सिमर सिमर सुख पावो, जपदा हां जप जप के सुख पावांगा, काल कलेश तन माहे मिटावो। जीवन विच शरीर विच वरते हुए कलेश पाप सारे धोते जाणगे। सिमरों जात विसुंभर एक है, वो जरा विश्व दा मालक वाहिगुरु अकाल पुरख है, उसनू याद करा, उसनू चेते करा, उसनू जपा। जिसनू अगे भी बड़े याद करते, नाम जपत अगणत अनेक है, वेद पुराण सिमरत ये सारे जिसकी सिफत करते ने, शुद्ध अखरां नाल जेड़े उन्हूं याद करते ने, शुभ बचना नाल शुभ भावना नाल जेड़े उहदी उस्तत करते ने, उसनू याद करने वास्ते एक अखर की लोड़। कैसी कमाल की गल है, साहब कहिंदे तेरे हिरदे च वस जाए ना, आप पढ़ते हैं एक अखर हर मन बस नानक होत निहाल, उन्हू याद करने वास्ते एक अखर की लोड़ है। और वो अखर कैसा है, सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, वाहिगुरु अकाल पुरख नूं चेते कराउण वाला कोई एक नाम। वैसे सतगुरु ने धन गुरु नानक ने संसार नूं उसकी महिमा बेअंत, उसकी लखी ना जाई जाण वाली लीला, उसकी महान वडियाई नूं अचलता दे रूप च मानदे आं, आनंद दे रूप च विस्मार दे रूप च आनंद लैके मानदे होया, सानू जपण वास्ते वाहिगुरु शब्द बख्शे।

प्राप्ति का प्रयोजन यही आप अगे भी पढ़ने हैं ना, जिस वखर को लैण तू आया, जिस काम वास्ते तेन भेजा गया है, जिस मकसद वास्ते तेन जीवन मिले है। राम नाम संतन घर पाया, प्रभु प्यार वाले लोगों के बैठ के इन्हां नाल मिलके तेन यह वस्तु प्राप्त हो जाए। संतां दे घर विचों, गुरु नानक दे घर विचों तेन यह वस्तु प्राप्त होए। ताजब मान ले हो मन मोल, हंकार छड़ के, क्योंकि हंकार दे मामले च महाराज ने बड़ा स्पष्ट वचन किया है, होमे नावे नाल विरोध है तो इन्हां वसै इक थां। हंकार ते नाम एक हिरदे च कठे नहीं वस सकते, नाम वसाउणा हिरदे च ते होमे कढ़नी पएगी, निम्रता धारण करनी पएगी। ते जिन्हां ने निम्रता नूं धारण कीता है, नाम अपने आप हिरदे च प्रवेश कर गए। साहब कहिंदे ने ताजा बमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल, फिर लाद खेप संतां संग चाल। ए सौदा लड़के, ए राम नाम दा सौदा लड़के, सतसंगियां दे नाल तुरदा रहो, उन्हां दे नाल रलिया रहो, मिलिया रहो उन्हां दे नाल। अवर त्याग पिखिया जंजार, माया दे जिहड़े बोझ शरीर दे उत्ते मन दे उत्ते पाए ने छड़ दे, हिरदे विच नाम नूं थां देनी है ते फिर माया नूं थां ना दे। इहनूं वरतदा चला जा, इहनूं सिमरन ना लग जा, इहनूं याद ना करन लग जा, इहनूं हिरदे च ना बना के बैठ जा। अमर त्याग पिखिया जंजाल, फिर वे कैसा आनंद बनता है। धन धन कहे सब कोए, जय जयकार हो जाए। संसार विच भी होवेगी ते मुख उजल हर दर कह सोए, दरगाह विच जाके भी मुख उजला होए। ये गल वखरी है, भागा वाले ने जिन्हां नूं समझ आई है। ये व्यापार विरला व्यापार है, नानक तंग है सद बलिहार है। मैं उस तो बलिहार ने जाता, साहब कहिंदे ने जिन्हूं यह व्यापार करना, और पहला भी किया है, जे तेनू यह व्यापार करना आ जाए कर लवे चंगा रहेगा। हलत पलत तो ले हो सवार, तेरी जिंदगी भी सौर जाए, तेरा भविखत भी सौर जाए, परलोक भी सौर जाए। राम नाम अंतर और धार, हिरदे दे अंदर धारण कर ले। राम नाम अंतर और धार, जे किवें जे तेरे हिरदे च नहीं वसदा, तेनू जाच नहीं आउंदी, तेनू समझ नहीं आउंदी, ता पूरे गुरु की पूरी दीखिया, पूरे गुरु को यह सोझी प्राप्त कर, पूरे गुरु को उपदेश ले, पूरे गुर का सुन उपदेश, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया। हर औखे सौखे समय विचों वो सच्चा बंदा सच नूं हिरदे च वसाउण वाला सुखी होके निकल जाता। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहुंचाए, सच व्यापार करो व्यापारी, ए व्यापार करने वास्ते तू आए। दरगह निभे खेप तुम्हारी, ए सौदा तेरा दरगाह तक निभ जाने वाला। क्योंकि साहिबा ने जीवन दे ते परलोक दे रस्तियां बारे, उनकी औकड़ा बारे ते नाल निभ जाने वाली इस वस्तु बारे बड़ा स्पष्ट किया। साहब कहंदे ने जे पैंदे के गणे जाहे ना कोसा, जिस राह दे को नहीं गिने जा सकते, हर का नाम ऊहा संग दोषा, उथे नाम तेरे नाल निभ जाने वाला दोषा साबित हो। जे पैंदे महा अंध गुबारा, जिथे चानण दा होर कोई साधन नहीं, हर का नाम संग उजियारा, जिथे सूरजा दा चानण बेकार है, उथे नाम दा चानण आधार है। जहां पंथ तेरा को ना सिंहाणू, अपने भरा मित्र पुत्र जिस राह ते तेरे वाकफ नहीं बनणगे, हर का नाम तहनाल पछाणू, उथे तेरा साझीदार होके निभेगा, साथी होके निभेगा। जय महा भयान तप्त बहु काम, जिथे अग वर्दी जापदी, कीते हुए कर्मां दे फल वजों, माड़े कर्मां दे फल वजों जिथे तपशां व्यापदियां ने, उथे जे नाम जपया होवे ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम, ठंडका देवेगा तेन, उन्हां तपशा तो बचावेगा। उहदे बारे साहिब कहिंदे ने सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभे

खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे। जे तू एक उस दा आसरा रख के चले नानक बौर ना आवे जाहे तेनू मुड़ के आना जाना नहीं पे। जिंदगी का मनोरथ पूरा हो जाएगा। वो मनोरथ जिंदगी का की है।

भगत भाए तरी है संसार फिर भगती तन होसी सार जेड़े भगती दे लड़ नहीं लगे जिंदगी एवं मिट्टी होके लग जाए आखिर का शरीर मिट्टी है ए शरीर दिया सारियां क्रियावां भी बेकार ने जे नाम नाल आपां शनिवार रोज पढ़ते हैं पहला सुचा आप होए सुचे बैठा आए सुचे अगे रखे हो कोई ना पिटे हो जाए सुचा होए कह जेविया लगा पढ़ सलोक कोठी जाई सटिया कैसे लगा दोष आखिर शरीर नु दोष है कि इना पवित्र अन्न जिदे बारे साहब कहते ने अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाया गिरदता होआ पाक पवित्र पर पापी चौतन गड्डिया थुका पईया ऐसे अन्न ते थुका सुटिया गई दोष किनु लगा दोष तो ऐसे शरीर नु लगा ना पर साहब कहते ने नहीं जिसने सारा अन्न खराब किया खाया बैल वधाया साहब एक तो और बड़ी प्यारी गल कहने साहब कहते नवे छिद्र सवे अपवित्रा नौ दे नौ सुराखा शरीर के नौ सुराखा गंदी निकल पर जे कि तू बोल हर नाम पवित्र सब किया तू नाम जपन लग पवे ना ते जो कुछ निकलने वाला है वह तो पवित्र होगा पर तेरे से दोष का ना नहीं तो वह जेड़ा जित मुख नाम ना उचरे बिन नाम है रख खाए नानक एवें जानिए जित मुख थुका पाए वह थुका जी उसे पैदा ने अन्न गंदे करने वाले मुंह से पैब कहते बिन भगती तन होसी सार सारे सुख लैने सर्व कल्याण सुख निध नाम नाम तो टुटिया होया बंदा दुखी है ते जेड़ा नाम नाल जुड़ गया सारे सुख सारे कलेश मिट के कल्याण सारे कल्याण सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम डुबदा डिगदा डोलदा परेशान बंदा चैन पा जा भगत जना के मन विश्राम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नाश शरीर दे मन दे संसार दे परलोक दे सारे दुखां दा नाश हो जांदा है साहिब कहिंदे ने नानक नाम जपो गुणदास उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे तिस दे गुणां दा वर्णन करो सारे ही दुख दूर हो जाणगे साहिबां दे कोले गाया सी दुखी बंदा धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे पास आया सी चुक के लियाए सन आया कन आउण जोगा ही नहीं सी रोग सी जलोधर दा जलोधर दा जे आपां मूल शब्द लभीए ना वह है जालोदर पेट च पानी भर जाए मनुख दे पेट च पानी भर जाए तो कहते ने जालोदर भाव जालोदर उधर पेट च पानी भर गए ते जिस बंदे नूं रोग हो जाए ना पासा भी नहीं भर सकता चुफाल प्यार है अपनी क्रिया की साधनी है उठना की है बैठ नहीं सकता पेट पानी नाल भर के इधर उधर फैल जाता है ते बंदा चुफाल प्यार रहता है हौली हौली ये पानी सारा खून दिया नाड़िया च चल जाता है ते खून की बजाय सारे शरीर च पानी चलता है फिर बंदा एक दिन छुट्टी कर जाता समाप्त हो जाता आम तौर पर पुराने समय च कई बार इनू असाध रोग भी मनिया गया पर कुछ लोग सियाने ऐसे भी सन जिहड़े इलाज कर लैंदे सन यह बंदा जिहड़ा लिया गया लाहौर तो इहदा किसे कोलों इलाज नहीं होया क्योंकि अवस्था ठीक नहीं सी रही रोग की अवस्था जिहड़ी ओह तीजे दर्जे तक पहुंची हुई भयानक अवस्था च पहुंची हुई हकीमां वैदा ने कहता नहीं साथों ठीक नहीं हुई ते जिस बंदे नूं रोग बड़ा है एक होर भी कसर सी ये सरकारी अहलकार ते टब्बर दे गुजारे का साधन इहदी नौकरी अज इहदे शरीर नूं कुछ हो जांदा है टब्बर रोटी कित्थों खा लेगा परिवार का आसरा बनया हो हालांकि आसरा निरंकार है बंदा समझता ऐसा कि जिसके राही रोटी मिलती सी जे इनू कुछ हो गया तो पता नहीं की बनेगा हालांकि ऐसा है पावन बाणी सानू विश्वास दृढ़ कराउंदी है कि नहीं उस मालिक से भरोसा रख पर टब्बर के लोग परिवार के लोग परेशान सन थां थां ते भटकदे फिरदे अखीर वह टिकाने पहुंच गए सरोवर की कार सेवा हो रही है रामदास चक अमृतसर साहब उथे ले आए ने एक जना कहन लगा महाराज तुहाडे दर ते लैके आए हां किधरों ठीक होण दी आस रही जे तुसीं कृपा करो कृपा दृष्टि करो तुहाडे दर ते बड़िआं दे रोग कट्टे जांदे सुणे तुसीं कृपा करो ये बंदा बचदा ते एक बहुते दुखी ने भी कहता महाराज वेखो जे बचदा तां ठीक है नहीं तां कृपा करो इहदी जान तां छुट जा कई बार बंदा इत्थे तक भी जा पहुंचदा साहब कहन लगे देखो भाई मालक दी आवाज आवे ते जी सदके सिर मत्थे जीवन नूं अलविदा कह के जाना बनता पर जब तक ओहदा सदा नहीं आउंदा मौत दी इच्छा करनी भी गुनाह है आत्मघाती नहीं बनता
जीवन की इच्छा करनी मनुख का अधिकार है, मौत नूं प्रवान करना होर गल है, लेकिन जीवन की इच्छा ना रहनी यह तो बहुत माड़ी गल है। जीवन की इच्छा करन दिओ, तुसीं भी करो, इहदे वास्ते इह भी करो कि महाराज ये बच जाएगा। साहब कहन लगे बच जाएगा, जीवेगा जवावेगा, ऐसी गल ही साहबा ने बचन कर दिता। भाई बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई बुढ़ा जी सिर ते टोकरी कार सेवा की चुकी हुई, कारे की टोकरी चुकी हुई है, उदो पौड़ तां नहीं सन, अज सरोवर की खटाई बटाई हो रही, टोकरी चुकी चढ़ाई चढ़ रहे, पैरां नाल बने हुए उस रस्ते उत्ते उपर नूं चढ़ रहे। जिस वेले साहब से पाशा जिथे बैठ के धन गुरु अर्जन साहब अद पंजनी साहब देर दे कोलथड़ा साहब जिथे बैठ के साहब सेवा करवाया करते सन, इधर नूं बाबा बुढ़ा जी जिस वेले चढ़े, चढ़ाई चढ़ के कोलों लंघन लगे ते महाराज सच्चे पातशाह ने कहा बाबा जी रुक गए। महाराज वल निम्रता नेत्र चुका अगे वेखिया, कहन लगे हुकम पातशाह साहब। कहन लगे रोगी आया, पेट पानी नाल भरिया है, वेखो ये ठीक हो सकता है। बाबा जी दे सिर ते टोकरा सी वगा के उहदे पेट दे उत्ते मारे, उवें ही कार सेवा का भरिया होया, कारे का भरिया होया, भारा टोकरा मजबूत हथा नाल चुकिया होया, भरिया टोकरा उहदे पेट ते चुके मारे, सारा पेट का पानी एकदम बाहर आ। उन्हें कोई इलाज तो नहीं, पर बाबे बुढ़े कोल इलाज है, ब्रह्म ज्ञानी कोल ऐसा भी इलाज है। यह कोई इलाज नहीं जलोदर का कि उहदा पेट दबा के पानी कढ़ता जाए होर भर जाएगा, और इस तरह दबा के कढ़न नाल कई होर कंप्लीकेशन भी हो जाती है, लेकिन बाबा बुढ़ा करे तो ठीक रहिंदा काम, क्योंकि गुरु के हुक्म विच कर रहे। एक आप ब्रह्म ज्ञानी सेवादार है, एक गुरु की रजा विच पेट का सारा पानी निकल गया, बंदा उठ के बह गया, चरणा ते बह गया। महाराज कहन लगा महाराज तुहाडी बड़ी कृपा, उठण जोगा करता जे, हुण इन्नी कृपा करो आ बैठा खलोण जोगा भी कर दे, जीवन जोगा भी कर दे। धन गुरु अर्जन साहब कहन लगे सुन गुरमुखा, जे आ ही गया ना ते तैनू हुण अधूरा नहीं भेजांगे, टूणा नहीं भेजांगे, जे आ ही गया इत्थे ते इत्थों तैनू राह दे के तोरां, हथ बन के खड़ा हो गया। कहन लगा पातशाह करो कृपा। साहब कहन लगे देख ए जीवन तां मिल गया है, इस रोग तो तू बच गया, लेकिन उधरले पासे तू सरकारी अहलकार है, जाके तू फिर अपने नौकरी संभाल लवेगा, माया विच रुझ जावेगा, हुक्मां च लग जावेगा, वेखी कितें अंदर दी बीमारी उथे दी उथे खड़ी रहे, होमे दी ते होर लालच दी ते कई तरह दीआं बीमारियां ओह कितें उथियां खड़ियां रहण। कहन लगा महाराज करो कृपा, सारे पासों स्वस्थ करके भेजो, सारियां तंदुरुस्तियां बख्शिश करो। साहब कहन लगे जे सारे पासों तंदुरुस्त होना है, शरीर करके भी तंदुरुस्त रहना, संसार दे सारे सुख भोगने ने, तां वजीर खां इस तरह कर सुखमणि दे लड़ लग जा, सुखमणि पढ़िया सुनिया कर, पढ़ सके ते ठीक है, तां सुनिया कर। ए वजीर खां सधारण बंदा नहीं, अगे चल के आपां इतिहास च पढ़ने आं, जहांगीर दे समें विच ही इह वजीरे आला बन गया सी, सब तों वड्डा वजीर बन गया सी, शाहजहां दे समें ते वी वड्डे वजीर दी थां ते रहा। लेकिन एक कमाल दी गल रही है, बादशाहत दियां गुरु घर नाल दोख भरियां कारवाइयां चलदियां रहियां, लेकिन यह बंदा जिहड़ा है गुरु का सत्कार इहने नहीं छड्डिया। जिस दिन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह नूं लाहौरों सद्दा आया सी, यही वजीर खां इहदिया तोरिया गया, जिस वेले जहांगीर के दरबार वल हुक्म होया कि जाओ उन्हां नूं लैके आओ ते वह आके इत्थे सानूं जवाब देण, जो कर रहे ने ठीक है। वजीर खां नूं हुक्म कीता कि तू जा, तू वेख्या है अमृतसर अगे, तू उन्होंने कोल अगे गया है, जा दरबार का हुक्म उन्हें सुना दे। ते एदी ये तुरदे पता कि एदी दा मतलब हुंदा सी सरकारी अहलकार, डिग्निटरी, अदब सत्कार लैण दे हकदार बंदे, जिहड़े दरबारी सलाम लैण दा हक रखते सन उन्हां नूं एदी कहा जांदा सी। ते ए आम तौर ते या तां घोड़िया ते चलदे सन, चार पंज बंदे नाल होण, या मंजे ते बैठदे सन, चार बंदे चुक के अगले पिंड छड्ड आउण, ਉਹ ਅਗਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਘੋੜਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਮੰਜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬੜਾ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਅਧੂਰਾ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੁਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ? ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਭਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਮਾਲਕ ਭਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ? ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਔਰ ਦੁਖਮਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਵਰਤੀਆ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਰ, ਜਿਣ ਦੂਜਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੋ ਰੰਗ ਚ ਰਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਰਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਾਮ ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਰ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਉੱਛਲ ਪਿਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਆਪ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪੈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪੈ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਤਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ

is low. Low is low. Low is low.

0: अंतन पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी तेरा अंत न पारा बारिया
1: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी
0: अंत न पावत देव सबे

Yeah, bye, yeah, I'm gonna

कोई रचना बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस मौज का कोई इशारा होवे, कोई मिसाल होवे दुनिया ते, तां उदी मिसाल दे के समझाया जा सकदा। कबीर जी नूं पुछया सी, भाई तुसी स्वर्ग भी निंद दिते, नरक भी निंद दिते, ते चरना दी मौज नूं तुसी बड़ा बयान करदे हो, ओ मौज है कैसी, भला दसो तां सही। कबीर जी कहन लगे, कोई इस धरती ते मिसाल नहीं है जिदी मिसाल दे के मैं तुहानू समझा सकां भई चरना दी मौज कैसी है। चरण कमल की मौज को कहूं कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जे मैं कोई मिसाल दे के चरणा दी मौज नूं बयान कर भी देवां, ओ सुभाए मान नहीं होवेगा, क्योंकि चरणा दी मौज नूं कौन दसेगा। कह कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, गुंगे नूं मिठाई खवा दिओ तां ओ की दसेगा, कच्छा ही मारेगा, नचेगा, पर मुंह बयान नहीं कर सकेगा। जेड़े गुरु के लाल अमृत वेले जाग के इशनान करके गुरु दे चरणा विच जुड़ के आनंद माणदे हन, गुरु के शब्द रूपी चरणा नूं हिरदे विच वसाउंदे हन, ए मौज उन्हां नूं पता है। भाई जे तू भी उस मौज नूं मानना चाहुंदा है, उसका आनंद वेखना चाहुंदा है, तां फिर मेहनत करनी पवेगी, भाई जुड़ना पवेगा गुरु दे चरणा विच। कहबे को शोभा ने, जे मैं कुछ मिसाल दे के समझाउंदा हां तां ओ गल सुभायमान ही नहीं होंदी। आ प्यार वालियां नूं जिन्हां नूं चरणा दी मौज चंगी लग गई, ओ कहंदे ने इच्छा नहीं स्वर्ग दी, ना इच्छा राज भाग दी, प्रीति तेरे चरणा दी मंगा महाराज दी। जे तुठा है तां तेरे चरणा दी प्रीत मेरे हिरदे विच वस जावे। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले, दीवान सजिया होया, नाम दे विहाजन लई दूरों दूरों रूहां आके जुड़िया होईयां सन, ते महापुरख कहण लगे, गुरमुखो जप तप बरत कीने पेखन को चरना राम। जितने मनुख जप तप सिमरन भजन पुन दान करदे कादे लई, कि मैनू चरणा दी प्रीति बख्शिश होवे, चरणा दा प्यार मेरे। ते महापुरख बाबा आनंद सिंह जी कहण लगे, जे चरण प्राप्त हो गए, जे चरण मिल गए तां फिर की मंगोगे। ते सारी संगत हैरान हो गई, भई चरणा दी प्राप्ति हो गई, फिर हुण मंगण दी की लोड़ है, होर की बाकी रह गया जेड़ा मंगण वाला है। पर बाबा जी दे सामने किसे दी जुरत नहीं सी होंदी कोई बोल जावे, क्योंकि महापुरख दी उडारी ते साडे कलयुगी जीवां दी उडारी विच बड़ा फर्क है। जिथों दी गल उन्हां करनी है असी सोच नहीं सकदे, असी किसे अखरां दा अर्थ तां कर लवांगे, पर उस दा भाव और जो अनुभव नाम जपन वालियां दा हुंदा है, ओ किसे होर दा नहीं होंदा। कहन लगे, चरणा दी प्राप्ति हो गई ते फिर की मंगोगे, तां फिर आप ही प्यार विच आके रब दे रंग विच रते होए। कहन लगे, गुरमुखो जदों चरणा दा प्यार मिल रहा होवे, चरणा दी प्राप्ति हो जावे, तां चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लैण, क्योंकि कोई वस्तु मिल जावे ते फिर उदे नाल प्यार ना बने। कोई वस्तु सानू प्राप्त हो जावे, निरंकार दे दर्शन हो जान, ते प्यार ही नहीं बनया, स्नेह ही नहीं होया, तां फिर ओ रस ओ स्वाद उस बख्शिश तो खाली रह जाई। ते महापुरख कहन लगे, चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लिओ। इसलिए जिन्हां नूं स्वाद आ गया है,
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਬਾਗ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ।

मन ही माए सो ब्रह्म बताए गुर मन ही माए मेरे चित न चले मन पयो पंग मेरे चित न चले मन पयो पंग मेरे चित न चले।